0: ତୁମା ଜୀବନରେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଜିତିବ ତୁମେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ହାରିଯାଅ ତୁମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रमर प्रथम भक्ति गीतटी शुणन्तु पुरातन रचनारु कंठ देइचन्ति अजय कुमार पात्रा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+ किलोमीटरतः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राडगेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रेस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା।

0: झुमरुता तक झुमा झुम झुम झुमा रे तक झुम झुम झुमरुता तक झुमा झुम झुम झुमा रे तक झुम झुम झुमरुता।
1: एथरर शिल्पी रामेश्वर दास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत

0: इस खेल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
4: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
8: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
9: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
10: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर।
1: हाँ जी नमस्कार, मैं गोविंदा मेहर बोल गया
0: आ गया आ गया, हेलो अनुरोध
1: अस्थान
0: कार्यक्रम
1: आसावरा
0: के।
1: जिला बगर नाने कैसा
0: बहुत बहुत स्वागत। आ गया, किंता अच्छन
1: बहुत खुश लगा मते आपन एटा फेर आसी के जन बेले बहुत खुश लगा नाने।
0: जा हो भाई, मैंने मोर एत्ते मने रखी छन, भौणी मानकर भल पाएबा, भाई मानकर भल पाएबा, मते बहुत रिमोट हो जाऊ जमी पूरा। हैं
1: नानी मते आनी सर पड़ गेला नानी, जते ले आपन अवसर पानी दे देले हमर जो माने तो संपर्क कार्यक्रम जते ले चिट्ठी पत्र उपस्थापन को देले एते स्पीड बढ़िया रे, एते बढ़िया उत्तर सार बहुत बढ़िया लगला माने
0: जा हो
1: प्यारे सर पड़ गेला नानी।
0: आपण माने शताब्दी एक्सप्रेस काय काय एक्सप्रेस ना दे दे इतले, सेति लागि मैं बहुत खुशी है जे
1: हाँ
0: भाई केनता अछन, भल अछन कि नहीं, देह
1: बहुत
0: पा
1: बढ़िया अच्छा
0: बढ़िया अछन, आउ आपण काम धाम संगे आउ अन्यान्य जन कविता लेखा लेखि चली छे कि नहीं।
1: हाँ नानी कविता लेखा ही चली जाए तो मंच प्रोग्राम माने में जाऊँ जो आमे।
0: अच्छा, मंच प्रोग्राम जाऊछन
1: हाँ नानी
0: बेले सांप्रतिक परिस्थिति के देखिकरी काय काय।

0: हेलो अनुरोध।
1: आकाशवाणी सम्बलपुर समय सकाल 10 बजबाके जाउचे। हिंदी रे संवाद सुनुन रिले करी प्रचार करू जो आकाशवाणी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंध

0: ही सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। हिंदी संवाद सुनले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र नु। श्रोता बंधुमाने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु। याचिन मूलकर्मा ओडिया सिनेमार के पहला सुनमा प्रेमरे रिक्स हेला मते इश्क सिनेमार ई गीतटा गाईचन कुलदीप पटनायक आउर असीमा पंडा। गीतर रचना करिचन एमजेबी बंटी। संगीत संजय पात्र आउर सीतु रथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और

0: और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एथरर सिनेमा सपनर नायिका गायछन् विनोद राठौड़, गीत रचना अरुण मंत्री, संगीत प्रशांत पाढ़ी।

0: के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इत्रो सुनन तो आखी मो आईना सिनेमारे गीतटा गाइछन सोनू निगम आर पामेला जैन। गीत लिखिछन देवदास छोटराय, संगीत थी सजिछन दीपक कुमार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अधीनरे ओमबाडीसी अनुदान प्राप्त रे कार्यकारी हेतुवा सीबीएसई विकास प्रकल्प रे 6 मासिया सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम समर्थ कार्यकारी हेउछि। खणी खदान पूर्ण राज्यर 7टी जिल्लार ग्रामीण युवक युवतीक दक्षता वृद्धि पई कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान रे पिला माने 3 मासर क्लासरूम पढा ओ 3 मासर प्रैक्टिकल पाठ पढिवार सुविधा रहिछि। तेबे आउ देरी न करी देवगढ़ जिल्ला कृषि विज्ञान केन्द्र सह जोगाजोग करंतु।
2: आपण माने सुनुछन गुटे हिंदी सिनेमा गीतर कार्यक्रम, इथिरे सुनुछन हमेशा सिनेमार केतेटा गीत, संगीत थी सजेछन अनु मल्लिक। ए गीत के गाइछन उदित नारायण आर साधना सरगम, गीत लेखिछन राहत इंदोरी।

0: ଇନସେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ ହମେଶା ସିନେମାର କେତେଟା ଗୀତ ଗୀତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଥି ସଜେଇଥିଲେ ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହାଦେ ସମୟ ଦିନର 11 ବାଜବାରକେ ଯାଉଛେ। ହିନ୍ଦୀ ଥି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रम रा पहला गीत के गाइछन गीतांजलि पोढ़ो, लेखिछन बीरंची मल्लिक।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ପୁରାତନ ରଚନାନୁ ଗାଇଛନ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା।

0: चासी भाई और भौनी माने आपण मानंको आवश्यक योग्यता आधार रे पीएम किसान योजना रो सुविधा उपलब्ध कराइबा लागि विशेष पदक्षेप हाथ को नेछंती राज्य सरकार।
1: 2024 सेप्टेम्बर 8 तारीख रु नवंबर 8 तारीख पर्यंत एही प्रक्रिया चालू रहिबो।
0: जेउ चासी माने पीएम किसान योजना रे शामिल थाई मध्य निज पंजीकृत नाम विवरणी बा प्रोफाइल सह जमी जमा संक्रांतीय तथ्य संयोग करि नहंती सेमानकु आर्थिक सहायता उपलब्ध होई पारु नाही।
1: एथि पई चासी भाई ओ भूणी माने निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई जमी जमा तथ्य प्रदान सह कृषक ओडिसा पोर्टल रे निशुल्क पंजीकरण कराइ नियो।
0: हां, जमीर म्यूटेशन तारीख 1 फेब्रुआरी 2019 पूर्वरु होइतिबा आवश्यक।
1: कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
2: धरणीधर पटेल लेखानु ई गीत के गाइछन अशोक कुमार सोना।

0: ଆମ ରାଜା ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଘରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ।
1: ଓହୋ ମା, ତମର ପ୍ରତି କଥାରେ ଟେନସନ।
0: ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ?
1: ଦେଖ ମା, ଘରେ ସୋଲାର ଲଗେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଯିବ।
0: ହଁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମାଗଣାରେ ହେଇଯିବ।
1: ଜାଣିନ କି ସରକାର ପରା ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି।
2: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
3: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି, ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି, ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ, କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି, ଅନକହୀ ବିରାସତ କି, ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। ମହିନେ କେ ଆଖରୀ ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତଜାର, ମଲିଆଚଲ କେ ଆଞ୍ଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ, ହୋତି ହେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। ତୋ ସୁନିଏ ଇସ୍ ମହିନେ 31 ମଈ ସୁବହ 11 ବଜେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କେ ସଭି ଚ୍ୟାନେଲୋ ଔର ପ୍ରସାର ଭାରତୀ କେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେଭ୍ସ ପର। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: कौन रीमा, घरे सोलर लगे देला?
5: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
4: चिंता नहीं माने?
5: हाँ अपा, सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीवो।
4: सतरे?
5: खाली सेती किनु हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
2: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्यघर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्यघर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: एथर सुनून ए गीतटा गाइछन शेषदेव दास लिखिछन तरंग सेन मेहर।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ सिनेमार ए गीत के गाई छन चित्रा आर के लेखी छन देव कोहली संगीत सजी छन अनु मल्लिक।

नौकरी बिन रिश्वत हो काम। अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कल जुग नाम।

कमाल बनाया, कितनी उजरत दी लोगों को, कितना दिल दिखलाया। कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी, किसने कितनी गद्दारी की, कितनी भरी तिजोरी। किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए, हर कुर्सी मिली तो देश भगत ने कितने नोट कमाए। रिश्वत से ही छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आए।

0: माड़ी तिरछी चलाए चलाए आके झूम
1: भाई आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू
2: बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी।
3: आर पार कथचित्रर ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଦତ୍ତ। ଗୀତ ରଚନା ମଜରୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓପି ନାୟର।

0: डंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओ, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके

0: बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
1: जी जी जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षावन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी,
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
6: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी। दे
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सुनु थिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोता मानको जनाइ दउछु जे आज अपराह 2:45 रे सुनिपारे हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम। अपराह 3:00 किसान भाषार सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारा उपरे आधारित किसान भाषार विशेष कार्यक्रम मक्का पुपु झक्का झक्का। अपराह 4:02 रे पुणि थरे हेलो अनुरोध कार्यक्रम। संध्या 5:02 रे लोकगीत कार्यक्रम रे खंजणी भजन परिवेषण करिवे केदार सुनानी एवं साथी। संध्या 5:30 रे जुबवाणी संकल्प क्रम रे सुनिवे आलोचना नगर योजनाकारी भावरे कैरियर आलोचना करिवे आद्यांश माझी। संध्या 6:10 रे ओडिया लघु संगीत। संध्या 6:30 रे उज्ज्वल आम देश रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्र रो। राति 7:25 रे जिल्ला हालचाल रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्र रो। राति 7:30 रे कृषि संसार कार्यक्रम रे चासिंग सहित साक्षात्कार क्रम रे सुनिबे शिशिर मल्लिकंक सहित साक्षात्कार। राति 8:02 रे संबलपुरी गीत कंठशिल्पी नवीन कुमार एवं गीतांजलि पढ़ो। राति 8:15 रे ओडिया भक्ति संगीतर कार्यक्रम। राति 8:30 रे शास्त्रीय संगीत इथिरे लघु शास्त्रीय संगीत परिवेषण करिवे शोभा गोटु। राति 9:15 रे स्पॉटलाइट रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र। राति 9:30 रे संबलपुरी नाटक काल रचना प्रशांत कुमार माझी परिवेषण चेतना एवं चेतना सांस्कृतिक अनुष्ठान धनुपाली संबलपुर निर्देशना डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक प्रयोजना मुरलीधर पंडा। राति 10:30 रे ओडिया लघु संगीत ए थिला आज प्रसारित होगाक किसी कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी संबलपुर। वर्तमान समय दिन गोटाए होगा जाऊँ हिंदी संवाद शुणु रिले करी प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार रक्षा परिवहन समुद्री सुरक्षा बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं प्रेस वक्तव्य समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपाओलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासेट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: एवं मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त बात हुई है।
1: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु सुगम संगीतर कार्यक्रम। कार्यक्रमर प्रथम गीतटीर कंठशिल्पी अभिजित मजुमदार, गीत रचना बृंदावन जेना।

0: high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with five balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं प्रेस वक्तव्य समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है रोम से सुपर्णा भाटिया
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम चार दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति पांच इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
4: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
6: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा।

0: मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे किछि समय परी।

नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती जितेंद्र कुमार नायक मुख्य संवाद ओडिशा रे पुंजीनिवेश और शिल्पायन क्षेत्र में जापान अधिक सहयोग करिब कहिले मुख्यमंत्री युक्त दुई परीक्षा फल 85.85% परीक्षार्थी उत्तीर्ण राज्य में स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय आज आरंभ ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि पूरी श्रीमंदिर आज अनुष्ठित हेबो श्रीजीवंक बनक लागि नीति मनीष और पृथ्वीपाय महुमाछी सहित एकाठीर वार्ता नहीं आज पालन कराउछि विश्व महुमाछी दिवस एवं चलित सप्ताह शेष सुद्धा राज्यर विभिन्न स्थान में 2-3 degrees पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबा नहीं पाणीपाग विभाग अनुमान कोलकातारे अवस्थापित जापानर उच्चायुक्त इशिकावा योशिहिसा आज लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करी जापान एवं ओडिशा मध्ये संपर्क को सुदृढ़ करने आलोचना करिसेंति राज्यर विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प में जापानर सहयोग और संप्रसारित होता वाणिज्यिक संपर्क को मुख्यमंत्री प्रशंसा करिसेंति ओडिशा रे पुंजीनिवेश और शिल्पायन प्रयास में जापान निजर अंशग्रहण को आहरी वृद्धि कर श्री माझी कहते आलोचना समय राज्यर बौद्ध सर्किट एवं अन्यान्य प्राकृतिक पर्यटन स्थलीगुड़िकर जापान सह पर्यटन व्यवसायर विकास पई मुख्य माध्यम हेबो बोली बैठक जमापड़ राज्यर युवक युवती मानक जापान में निजुक्ति सुजोग सृष्टि करने लक्ष्य जापानर केतक निजुक्ति प्रदानकारी संस्था ओडिशा आसियो बोली जमापड़ जापानर तत्वरी राज्य एवं ओडिशार उच्चस्तरीय प्रतिनिधि दल गस्त करी कला संस्कृति इतिहास एवं ऐतिह्य क्षेत्र में उभय देश मध्यरे पारस्परिक सुसंपर्क स्थापन करिबे ओडिशा उच्च माध्यमिक

0: और
1: इधर नम ई प्रकार गीत पाड़दात आरो नम नलदात भी हेले टिके अगलिन जन गीत बन पाड़कार जन टेड़ेना गीत बो हु बकेन हन्य प्रकार गीत बन प्रकृति एका बकेन पाड़नार आरो ई जन गीत पाड़लनार नम ओंटा बैठकिनु पाड़नार का हने दल दल हेकरी पाड़नार निमेतरा कने हु कथन गीत तंग
0: बहुत बढ़िया बात ओंटा कुको कुकर की बेंजा धार्य मंचकरा एर किन चेन छोटे बाकी आदिन तंगलेन हेले बेंजा पूर्वनु आजकल ता ब्राह्मण बेंजा मंचकरा नामे हुन्ने मल्लारु लगन दुई दिन अगली इंदर कार्यक्रम बन रो नामे सीधा बोलते आवर और आकु कायबन होर कुकर पन बेंजा बना लिया बाकी दुई दिन अगली ही लगान अगली ती नामे इ कार्यक्रम बन उयाल यार
1: अच्छा
0: पच की पच्चो जमा रोक कल यार बाकी नम ए रागे कादम अब मन कम से कम हेलु धरदम नलदम ही बाकी असन ओक्काउ टेड़ा लियार पच्चोर फाल्टे आउ पच की फाले आउ हुदिन टेड़ना गीत बन पड़ा लिया रंगे नैन मंचकिन चन हुदिन पोदे हु बोदकिन खाली याद मंचा कर
1: कुछ
0: बाकी नादिन भी अकुन एम ही पाड़ी की ना एम है जन अनुष्ठान रही स्टेज नु परफॉर्मेंस कमा काल दम अनु टिके आउ टिके तंगा नन्नी कमी की ना
1: फिर पूर्वी समान
0: ना पाड़ल दम आदिन
1: हेले नाम इंद्र के का नाम जेहेतु नाम समाज नु अतुलदात आरु नमे उनटा इन्ने संप्रदाय नमे कुणा संप्रदाय बोध जे नाम कट्टा है क्री रादात आउ जेतिर के संगन उनटा भल संपर्क उनटा रही ता हु संपर्क बोन ई गीतु ई बजा ई नालना बोध आर्टी के जोड़ी आर्टी मजबूत नानी आउ हने एरो थले नाम ही चिरका तदुर आतल दात नमे ई गीतु बद्या पन्ने क्री आउ ई जन नमे संस्कृति बोध ई नमे गीतु बोध नमे वाद्य बोध एक्का निकरी नमे भविष्य गे पीढ़ी गे को अदगे लगन उनटा नमे भी उनटा कर्तव्य मन्ना कथा ने ने आहाल दत नाम आउ हुने रो थले ता आधा आलार मोदरी छकार रहिन ता ई बोध एक्का निकरी नमे भविष्य पीढ़ी गे को और ताम ही आहांगोर इदगे लगन ता निमे उनटा अनुष्ठान अतली ता निमे अनुष्ठान तरफ नु एक्का निकरी निम ई गीतु ई वाद्य बन निम रिहर्सल नंदार का आदान निम अभ्यास कमदार आउ तार परे परे निमे अनुष्ठान तरफ एका एका तरा निम केरकादार ई कथन टिके तेंगोर
0: हाँ हो ता ठीक था रिहर्सल ता कमदाम हुने जेते रिन आ जेतेर गे जेहेतु अनुष्ठान जेतेर गे मौका भी चल दाम जे जेतेर बारा शामिल मना सिखरा आउ एमता हनी गवर्नमेंट प्रोग्राम उठी भी कादाम ओडिशा बाहरे भी केरकादाम आउ सीएम प्रोग्राम पीएम प्रोग्राम जेतेर घी जहाँ गवर्नमेंट तरतीन बराली गवर्नमेंट बोध भी नमे ई भाषा बोनी नमे डांस नलना तो नाम जेते लागू कम किचि आउ मेहना है एम काल दम आउ कमल दम
1: आउ होने रो तेरे तना हमेता पुरखार जेत की गीत पारा लिया रदम तना मने ई कदा तरु पारा लात तंगे संगे संगे पुना पुना गीत भी निम लेखदार जोरदार आरु अदन भी निम अभ्यास कमदार का
0: हाँ पुना पुना नमे पुरखा भाषा बन हुई कि ना गीतु कमाल दामे सोबा के पुना पुना जनता की अनु जनता पूरा पच्चा उचकुन पच्चा वार्ड रो अन्य गीतु उठिन बेदा बेदा जोड़ा जोड़ा दिन लेखाल दाम
1: लेखाल दार
0: जनता का अगली अलर आउटी के आहोर ताम ही कामोर बुली
1: अरे इन्ने भी नमे ऐरा खतरी जे नमे कुना समाज नु जेते बोले नाम बेंजा कारोच कमाल दात गुठी नाम गीतु पार दात नाल दात बाकेन इन्ने घाय घाय एरदात जी नमे हेलु सड्डी का नमे जेत की बजातली अदा सड्डी अरु जेन सुर नु नम पाड़दात अदा धीर राई किंतु उड़िया नु भी घाय घाय पाड़ा खतरा ली उड़िया नु भी माने पाड़ना पन नम मेनाल दात ता हु प्रकार गीत निम फिर पाड़दार का पूरा पूर्णति अदा निम ट्रांसलेशन कमदार
0: एन ता हुन्ने मल्ला पाड़ुन जते जहा नमे राई अगलिन ती सुर उठी औ जहा कुन्हा सुर बदराई आदिनिन लेखी किना आदिनिन मने कामी किना पाड़दा माउ उड़िया हु गुठिन मल्ला कमना और ने दिन कम चुकुन ही अलारिन अंतंगेन जे कुणा वार तीन पाड़ा नामे कुणा तेत की भोल भोल रही आदान ही नाम कमो थे अगली को नामे भाषा बहुत बाचरो बोली कि ना
1: चिंता नंदार और ने आलोचना नंदार हेले एरा खातिर लीजे धीरे धीरे ई जन संगीत जगत बोध पूरा कहीं कहीं कहीं कहीं बुंगा काली अगली अगली बुंगा ली आरो एरा खातिर की चीजें जेते बोले नामे कुणा संप्रदाय के पार्टी जेते बोले स्टेज नु बारल नार नालाल नार निम जनता तिंकार जे भिन भिन प्रोग्राम के निम का आधार बाहरी नाला गे लगन ता एरा खतर की चीज हमने स्टेज गुठी नु नाम ନାମେ କୁଣା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେତେବେଳେ ନାଲନାର କିନ୍ଦ୍ରାରା କିନ୍ଦ୍ରାରା ଆଦାନୀ ନାଲା ନାରଲା ଆରୁ ଆଦାନୀ ନାଚ୍ଛାଲନାର ବୋଲିକିରି ହେତ୍କି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମା କାମନାର ଅଡିଏନ୍ସ ବାହାରେ ତ ନାମ ଏକା ନେଇକିରି ପୁନା ପୁନା ଯେନ୍ତା ଦର୍ଶକର ଗେ ଲାଗାନ ଭଲ ମାନ ଆରୁ ଭଲ ଲାଗ ହନେ କିଛି ନିମ ଭାବଦାର କାଇ ନିମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫି
0: ହଁ ହଁ କାଁଟା ନାଚୁଛନ୍ ଗୋ ଗୋଲ ଗୋଲ ନାଚୁଛନ୍ ହନେ ବାନାଏ ଆଧି ଲାଗାନେ ଥିମ କାମ ଦାମ ନାମେ କୁଣା କଲଚର ବନ ହୋଇକିନା ଆ ଥିମ ହିସାବ ନୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଭଲସେ ସାଜାବଦାମ ଆଉ କାମଦାମ ଗେ ନାଲାର ଏର ଆଗେ ଭଲ ଆଖନାଏ ଆଉ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆମ ଚାଲି ନୁ ନାଲଦା ଥୁନେ ବାଜକୁନ୍ ଅ ଖାଲି କିନ୍ଦ୍ରାଲ ନାଇଁ କିନ୍ଦ୍ରାଲ ନାଇଁ ବାନାଏ ଆଗେ ତେଙ୍ଗନା ହିଁ ନିଅ ଆସାମ ଭି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ମାନାପଲ୍ଲୀ କେ ମାନେ ଗେନେ ଆଧି ଲାଗାନ ଥିମ ଗୁଠିନ କାମା କାମା ଆସାମ ଘି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଦାଲ ଦାମ
1: ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନାମ ବଦଲାରତ କିନ୍ତୁ ବଦଲାରତ ର ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ମାନିଲି ଯେ ନାମେ ଯେନ୍ ପାଚା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଆବନ ଆମ ଗଛ ହଁ ତ ଆଦାଧିର ଆରୁ ସାମିଆ ଯେତକି ଦରକାର କାମାଲି ଆ କଥାନ ଭି ନାମ କାମ ତାରୁ ମାନେ ନାମେ ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଆଥିଲି ନାମେ ଭାଷା ଆଥିଲି ଆଦାନ ନାମ ପରିବେଷଣ ନାନତ ହେଲେ କଥା ମାନଯା ଯେ ଆକୁନିମ ଯେହେତୁ ଗୀତୁ ପାଡ଼ାଲଦାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଡ଼ି ଥିକରି ଆତଲଦାର ଆଉ ନାମେ ଭାଷାବୋଧ ନାମେ ଗୀତୁ ନାମେ ଇ ଯେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ବୋଧ ଯେନ୍ତା ଆଉ ଆଗଲି ଆଗଲି କ ଆହୁରି ଆଲାର ଆହର ଆଦି ଲାଗନ୍ତାନି ନାଲକୁ ହି ନାନାଦାର ହେଲେ ଇ ବୋଧ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁ ନିମେ ଏନ୍ଦେର ଇଚ୍ଛା ଥିଲି ଯେ ନାମେ ଇ ଗୀତୁ ନାମେ ଇ ସଂସ୍କୃତି ବନ ନେଇକିରି ନିମେ ଏନ୍ଦେର ମାନେ ଭାବନା ରହି ଯେ ଇ ବନ ଏକା ନେଇକିରି ନାମ ପୁନା ପିଢ଼ିକେ ଲାଗାନ ଇଅ ତାରୁ ଯେତେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାଦ କାମତ ହନେ ଏକଲା ନିମେ ମନୁ ବାର କିଛି ଭାବନା
0: ହଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ହୁନେ ବହୁତ ବାରିବାକେ ନିନୁ ରାୟନେନ ନାମ ଆକୁନୁ ଇଅ ଥିଲେ ଆଗଲି ପିଢ଼ି ବି

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଟାଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାର୍ଜିଓ ମେଟାରୋଲାଙ୍କୁ ଭିଲ୍ କଲେ ସାକ୍ଷାତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି 2024 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ନେଇକରି ଚୀନ୍ ଆଉ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହନ୍ ଗିଉ ବାକ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଣିଷ ଆର୍ ପୃଥିବୀ ଲାଗି ମହୁମାଛି 101 ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମନାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ ସରକାର ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ତଳସ୍ତରୀୟ ଖେଳର ବିକାଶ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆନ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲାଗି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆର୍ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅତ୍କା ସହଯୋଗ କରିବା ଜାପାନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାହାରିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଲ ପାସ୍ କଲେ 341,781 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ପହିଲା ହପ୍ତାହ ହେବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ଏବା ଜୁନ୍ 2 ଖୋଲିବା ମଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତଦୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 577 ମାର୍କ ରଖିକରି ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଟପର ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ଥି ଆଜି ମୁହାମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କେତେଟା ଜାଗାନ ହୋଇପାରେ ହାଲକାନୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଏଚ୍ନିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନ ଶେଷ ହେଲା ଇତାର ଉତ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 8 ବଜେ
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी
1: काली पुतुरा घर को जाइकी आसिली देखिकी आश्चर्य हेली कि सेमाने दिन जाक एसी लगाउछन्ती सबुबेले वॉशिंग मशीन चलाउछन्ती घरे दि दिटा फ्रिज अछि किंतु तारो बिजुली बिल जानिछो केते आसुछि जीरो मु पचेरिलारु पुतुरा कहिला
2: दादा सबु से ऊपर वाला रे दया माने सोलार पैनल रो
1: मु भाबिली एबे तो लगैबा कुही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in रे

0: ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଆଜି 8:30 ଶୁଣିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଘୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଶୋଭା କୁର୍ତ୍ତୁ। ଆଜି ରାତି 9:30 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ କାଲ, ରଚନା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାୟକ, ପ୍ରଯୋଜନା ମୁରଳୀଧର ପଣ୍ଡା। ରାତି 8:00 ଶୁଣିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ବେତାର ବିବରଣୀ ରିଲିକରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା।
1: ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ସମ୍ପର୍କରେ ବେତାର ବିବରଣୀ। ଉପସ୍ଥାପନା ସମୀର ମିଶ୍ର, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ଏବଂ ସନାତନ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଯୋଜନା ରାଜୀବ କୁମାର ମହନ୍ତ।
2: ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ 2026ର ବେତାର ବିବରଣୀ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ 2026। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଅତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
3: ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଇସ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍ କି ଇସ୍ ଜୋନାଲ ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର କନ୍ଫରେନ୍ସ ମେ ଆପ୍ ସଭି ମହାନୁଭାବ କା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ। ଇସ୍ ଆୟୋଜନ କା ପ୍ରେରଣା ହମାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଦି ହୈ କି ହମ ଲୋଗ ଜୋ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରତେ ହୈଁ ଉସସେ ପହଲେ କି କ୍ୟୁଁ ନହିଁ ହମ ଲୋଗ ଜୋନ୍ସ ମେ ଜାକେ ଜୋ ହମାରେ ରାଜ୍ୟ ହୈଁ ଉନକେ ସାଥ ମିଲକର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ଦୋ ପେ ଜୋ କୃଷି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୈ ଉସପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ତ ଇସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ହମାରା ପ୍ରୟାସ ହୈ କି ଜୋ ହମାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ହୈ ଉସକୋ ଆପକେ ସାମନେ ରଖେ, ଉସମେ ଜୋ ପ୍ରଗତି ହୁଈ ହୈ, ଜୋ ଇସ୍ କ୍ଷେତ୍ର କି ବିଶେଷତାଏଁ ହୈ ଔର ୟହାଁ କି ଜୋ ଚୁନୌତିଆଁ ହୈ ଉସପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। ଔର ସାଥ ହି ସାଥ ଜୋ ରାଜ୍ୟ ମେ ଇନୋଭେସନ୍ସ ହୋ ରହେ ହୈ, ଜୋ ଉନ୍ନେ ଅଚ୍ଛେ କାମ କିଏ ହୈ ଉସକୋ ଭି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କା ଅବସର ମିଲେ ତାକି କ୍ରସ୍ ଲର୍ନିଂ ହୋ ସକେ, ରାଜ୍ୟ ଭି ସିଖେ କେନ୍ଦ୍ର ଭି ସିଖେ ଔର ଜୋ ଉସମେ ଐସି ଚିଜେ ଜୋ ଦୁସରେ ରାଜ୍ୟ ମେ ସ୍କେଲ ଅପ୍ କି ଜା ସକତି ହୈ ତୋ ଓ ସମ୍ଭାବନାଓ ପେ ଭି ୟହାଁ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋ।
2: ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୃଷିର ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଲେ,
4: ଓଡ଼ିଶା କେ ଲୋକପ୍ରିୟ କର୍ମଠ ଔର କଳ୍ପନାଶୀଲ ମସ୍ତିଷ୍କ କେ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀ, ହମାରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର କେ କୃଷି ଓ କିସାନ କଲ୍ୟାଣ ଆଦରଣୀୟ ରାମନାଥ ଠାକୁର ଜୀ, ହମାରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ଆଦରଣୀୟ ଭାଗୀରଥ ଚୌଧୁରୀ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶା କେ ମାନ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଔର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେବ ଜୀ, ବିହାର କେ ୟଶସ୍ୱୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଜୀ, ଛତିଶଗଡ଼ କେ ହମାରେ ୟଶସ୍ୱୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ରାମ ବିଚାର ନେତାମ ଜୀ, ଔର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ କେ ଖାଦ୍ୟ ଔର ଆପୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଜୀ, ଅତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୀ, ମାଙ୍ଗିଲାଲ ଜାଟ ଜୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେ ବି ସଭି ଅଧିକାରୀଗଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କା ଭାତ ଜଗତ ପସାରେ ହାଥ, ଲେକିନ ଭାତ ବି ତ ପୈଦା କିସାନ ହି କରତା ହୈ ଔର କିସାନ ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦିତ କରତା ହୈ, ଇସଲିଏ ଅନ୍ନଦାତା ତ ହୈ ହି, ଲେକିନ କେବଲ ଅନ୍ନଦାତା ନହିଁ କିସାନ ଜୀବନଦାତା ହୈ, କ୍ୟୁଁକି ଅନ୍ନ ପୈଦା କରନେ ବାଲା ଜିନ୍ଦଗୀ ଦେତା ହୈ। ଆଜ ଜବ ହମ ବୈଠେ ହୈ ଏ କେବଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ କେ ଲିଏ ନହିଁ ବୈଠେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନା ତୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ଲିଆ, ଏକ ତଳଫ କେ ସାଥ ବୈଠେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ହମାରା ଦେଶ ଲଗାତାର ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ କେ ପଥ ପର ବଢ଼ ରହା ହୈ, ଏକ ବୈଭବଶାଳୀ ଗୌରବଶାଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ସମୃଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ କା ନିର୍ମାଣ ହୋ ରହା ହୈ ଔର ଉସ ନିର୍ମାଣ କେ ଲିଏ କୃଷି ଆଧାର ହୈ। ଆଜ ବି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କି ରୀଢ଼ ହୈ କୃଷି, ହମ 140 କରୋଡ଼ କା ଦେଶ ହୈ, ହମାରେ ସାମନେ ସବସେ ବଡ଼ି ଚୁନୌତି ହୈ କି 140 କରୋଡ଼ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ କେସେ ମିଲେ। ମୁଁ ଆପ ସବକୋ ଭି ବଧାଇ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ। पांचों राज्यों के मित्रों को बधाई देना चाहता हूं। अन्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। अब धान के उत्पादन में तो उड़ीसा हो छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिहार कृषि रोड मैप बनाने में अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की कृषि को और आगे बढ़ाने में। और आज हम इसीलिए बैठे हैं, कृषि के सामने जो चुनौतियां हम उन पर भी विचार करेंगे, हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उद्योगों को ठीक से इंप्लीमेंट करना है। देखिए तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए, कल कोई देने से ही इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप। जैसी परिस्थितियां आज, हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे। उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुखी जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हमारे सामने जो समस्याएं, बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जिस पे हम सबको मिलकर काम करना है वो है, हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं। पूर्वी भारत की आबादी घनी है, अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से में फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपेरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से, जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाए, प्रेरित करें, जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से ही इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। तीसरी चीज, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद। 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी, खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है। इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। कई जगह पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत। मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अवधि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसका फायदा यह होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, एक मिनट में दो मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा में पैदा हो रही है। क्लीन प्लांट मिले इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे, तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है। और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं, साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें, एक साथ चार चार पांच पांच राज्य जाएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं कि जो अगर बारिश में गैप भी हो तो टिक जाए। उड़ीसा जिस तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है कृषि के क्षेत्र में भी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी, मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। इतना तो मेरा फर्ज बनता कि इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आपने जो सहयोग किया और कहा कि आइए जगन्नाथ महाप्रभु की धरती पर आपका स्वागत है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सम्मेलन रे ओडिसा माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्य रे चासी मानंक कल्याण, आधुनिक ज्ञान कौशल रो व्यवहार ओ कृषि भित्ति भूमि रो सुदृढ़ीकरण उपरे गुरुत्व आरोप करी निज अभिभाषण रे कहिले,
5: जय जगन्नाथ। आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीयुक्त शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय केंद्र कृषि और किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री श्रीयुक्त रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री भागीरथ चौधरी जी, मेरा सहयोगी ओडिशा सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंह दो जी, माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीयुक्त रामविचार नेताम जी, माननीय कृषि मंत्री बिहार श्रीयुक्त विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय खाद्य जोगाण मंत्री पश्चिमबंग सरकार श्रीयुक्त अशोक कीर्तनिया जी, केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण सचिव श्रीयुक्त अतीश चंद्रा जी, डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारी वृंद, कृषि वैज्ञानिक, सभी भाइयों और बहनों, मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको श्री जगन्नाथ जी की धरती पर स्वागत है। पूर्व क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 के लिए ओडिशा को चुना गया है। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज वहां पूर्वी राज्यों के लिए कृषि क्षेत्र के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा वहां दिन भर होगी, और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और विशेषज्ञों को, जब सारी अधिकारीगण वहां उपस्थित रहे तो मैं आप सब लोगों को इसी आधार पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम सब यहां एक विशेष परिस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले ढाई महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्य में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूदी जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अद्भुतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। जैसा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए कई नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम हमारे राज्य तरफ से हमने भी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम दिस शब्द कहना चाहूंगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर उड़द और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले दलहन तिलहन अर्थात पल्सीड और पल्सेस में हमको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारे किसानों को इसी साथ पर ले जाएं और हमको इसका बहुत जरूरी भी है। आज हमने जैसे उड़ीसा में हमने किसानों को बोनस भी बोलते हैं लेकिन हमने उनको इनपुट असिस्टेंट के नाते पैडी प्रोक्योरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं और MSP के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3,100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेतीबाड़ी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी PM किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक CM किसान सम्मान निधि, तो 6,000 PM किसान और 4,000 हमने 2 किस्ती में CM किसान दे दिए और देते हुए 10,000 पर ईयर में हमने जो किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है और हमने एक डिसीजन ले लिया आज कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियर्ण योजना के तहत मिलेट्स बेहतर उत्पादन अमृत अर्न योजना के तहत ऑर्गेनिक राइस उत्पादन आज हम कर रहे हैं। मिलेट उत्पादन से पानी और खाद का व्यवहार बहुत कम होता है और लोगों के पुष्टि साधन के लिए ये एक सुपर फूड है। ये खासकर हमारे आदिवासी इलाकों जहाँ ज्यादा खेती किया जाता है इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अधिक ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोल्ड स्टोरेज योजना हमने आज शुरू कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी दे रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में निवेश करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे उत्कल चरणी।
2: उद्घाटन उत्सव पर द्वितीय अधिवेशन पूर्व क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकार प्रतिनिधि भिन्न भिन्न कृषि भित्तिक विषय उपरे विशद आलोचना पूर्वक सेमानंकर अनुभव और आभिमुख्य उपस्थापन करिथिले। ओडिशा सरकार तरफ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଓଙ୍କାର ସିଂ ମୀନା ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀମତୀ କଞ୍ଚନ କୁମାରୀ ଏଫ୍ପିଓ ଲେଡ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କୋମଲ ପରଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଧାନ୍ୟ କୃଷି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୌରଭ ସୁମନ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନର ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗିଲାଲ ଜାଟ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ତୃତୀୟ ତଥା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ,
6: ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କା ପାସ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେ ଯୋ ହମାରା ଫିଶରମ୍ୟାନ ଲୋକ ହେ ଆପ ଉସକା ଉପର ମେ ଥୋଡା ଧ୍ୟାନ ଦେଗା ଜରୁର ଆର ହମାରା ଯୋ ବେଙ୍ଗଲ ସେ ଯୋ ଅଫିସର ଲୋକ ଆୟା ହମ ଉନ ଲୋକ ଏକ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରକେ ଯା ରହା ହି ସେ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହର ସୁବିଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କା ଆମ ଜନତା କୁ ମିଲେଗା ଆର ଜିତନା ଜଲ୍ଦି ହୋ ସକତେ ହମାରା ବେଙ୍ଗଲ କୋ ଯୋ ଯୋ ଡିମାଣ୍ଡ ହେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କୋ ଆପ ଲୋକ ଲିକ କର ଦେଗା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କା ଆମ ଜନତା ତରଫ ସେ ହମ ଏହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫେର ବି କରକେ ଯା ରହା ହେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ହମାରା ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଜରୁର ପୁରା କରେଗା ଏବଂ ଆଗଲେ ପାଞ୍ଚ ସାଲ ମେ ଆମ ଅଦା କରକେ ଯା ରହା ଏହି ସେ ବେଙ୍ଗଲ କୋ ହମ ଲୋକ ଉସ ଜାଗା ମେ ପହଞ୍ଚ ଦେଗା ଯୋ ଜାଗା ଏକ ଟାଇମ ଫାର୍ମର ଲୋକ କା ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ଥା।
2: बिहार राज्य मान्यवर कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा निज वक्तव्य कहिले,
7: आज एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर देश का निर्भर करता है और यह कल्चर कई संदेश भी देता है। कई भावनात्मक जुड़ावों को आज हम जय जगन्नाथ का जिनका दर्शन करते हैं वो तो भी एग्रीकल्चर के प्रसाद से एकादशी जैसे व्रत में भी आज हमारा वह प्रसाद चावल का धान का जिस तरह से जुड़ाव होता है ये लगाव हमारे सांस्कृतिक विरासत को भी बताता है। हम जिस राज्य से आते हैं वह राज्य जनसंख्या में घनत्व के मामले में देश से सबसे ज्यादा पहले 1106 था अब लगभग 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है जबकि देश में यह 400 के लगभग है। जमीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। घनी आबादी होने के

0: कारण जमीन की कीमत जान से ज्यादा है और वह आजादी के बाद संयोग से बड़ी आबादी हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था। आज कई मामले को हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में देखा, एक नया अभियान भी शुरू किया, संभालने का प्रयास भी किया और आपके इस एग्रीकल्चर का अनुभव को लेके राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में 2 महीने के अंदर जनवरी और फरवरी में 47 लाख से ज्यादा एग्री स्टैक फार्मर आईडी हमने बनवाया कृषि विभाग के सहयोग से, हमारे नवदेश्वर जी प्रधान सचिव के रूप में और सीके अनिल दोनों मिलकर के पदाधिकारी भी पूरी टीम भावना से काम किया। मैं आगे जून तक 30 जून तक रखे हैं कि जो लक्ष्य 87 लाख का है उसको पूरा करने की पूरी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ सरकार कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग मंत्री श्री राम विचार नेतम वक्तव्य कहले,
2: छत्तीसगढ़ ने हम लोगों ने जो शुरुआत किया है धान से शुरुआत करके धान के बेहतर प्रोक्योरमेंट से लेकर के उनके मेलिंग की व्यवस्था से लेकर के बाकी चीजें का पैदावार को कैसे हम बढ़ा सकें, तो हम जहां पैदावार भी बढ़ा रहे हैं उनके मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करें, खरीदने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम सब प्रयोग किए हैं अलग अलग से और निश्चित हैं आपके पहल प्रयास से आपके सहयोग से हम लोगों ने, हम कृषि ही नहीं कृषि के साथ साथ में उद्यानिकी को भी काफी हम बढ़ाए हैं, उद्यान के क्षेत्र में भी हम नवाचार हमारा अलग से हो रहा है और निश्चित ही हमें कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जब हम दूसरे प्रदेश से हम निर्भरता हमारी थी, लेकिन आज है कि हम जरूरत के से भी अधिक पैदा जब कर रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी सप्लाई हमारा हो रहा है।
1: परे परे ओडिशार मान्यवर उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव वक्तव्य कहले,
3: यहाँ पे शिवराज जी हमको जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन को लेके जो एग्री स्टैक की बात कही गई है, हमें जो टारगेट 44 लाख फार्मर्स का हमको जो दिया गया था जिसमें से 17 लाख फार्मर्स का हम कर चुके हैं। बाकी सुबह कहा हमारे सचिव ने कि अगस्त 2026 तक हम बाकी को कंप्लीट कर देंगे। दलन तिलन की जो आपने बात कहा है उस एरिया और प्रोडक्शन को हम पल्सेस का बढ़ा रहे हैं और उसको पीएम आशा के माध्यम से उसको जितना बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। पल्स मिशन CRFM के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव राइस फॉलो मैनेजमेंट स्कीम में 4 लाख हेक्टर हम करेंगे प्रोडक्शन, 2 लाख मेट्रिक टन करेंगे, प्रोक्योरमेंट 20,000 मेट्रिक टन अभी हमने किया है, पेमेंट जो मार्कफेड डायरेक्टली किसानों को देता है। फोकस हमारा रहेगा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे, 2024 से ही ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने 2026-27 में 60,275 हेक्टर कवर किया है। हम 1 लाख किसानों को अमृत अन्न योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, 640 हेक्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1280 मेट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन का। बलभद्र जैविक चास मिशन के अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग हमारा हो रहा है। NHM के अंतर्गत 28 कोल्ड स्टोरेजेस हमारे कंप्लीट हुए हैं।
1: यहाँ पर भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौहान अभिभाषण कहले,
4: किसान भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। ऐसी स्थिति में जो वो काम कर रहा है उस किसान जो आज भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, पर इसका उद्देश्य मेन यही है कि आखिर इस देश का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए जो काम किया जा रहा है मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश भर में जो इसकी प्रशंसा हो रही है और किसानों में विश्वास जगा हुआ है। हम हॉर्टिकल्चर में, हम फल और फूलों में आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमें काम करने की

0: जरूरत है। मैं तो कह सकता हूँ कि इसके लिए हमारे ICR और हमारे KVK और APO ये मिलकर काम करें, क्योंकि KVK कृषि विज्ञान केंद्र वो है जो सीधे किसान से उसका जुड़ाव होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो APO 10,000 से अधिक पूरे देश में APO बनाए, यदि वो भी ईमानदारी से काम करें तो मैं कह सकता हूँ कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: तंक परे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर वक्तव्य कहले,
2: मैं दो बिंदु आपसे निवेदित करना चाहता हूं। बिंदु है अच्छे बीज। हम लोग 22 महीनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अच्छे बीज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, समय पर किसानों को नहीं मिल रहा, उस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को। और दूसरी बात, जब हम स्वस्थ रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेगा तो हम बलवान रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। खेत को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव है जब हम जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खेती पर हम जोर देना शुरू करेंगे। हम पदाधिकारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब तो आप श्रद्धे प्रधानमंत्री जी का जो नेचर है उस नेचर को पहचाने हैं, और उस नेचर के अनुसार जमीन पर काम करने का कोशिश कीजिए।
1: शेषे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग जुग्म सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल धन्यवाद अर्पण करते।
3: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उड़ीसा सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी आगंतुक मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण सहित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हृदय से आभार। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।
1: एटी शेष करुछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 बेतर विवरणी। नमस्कार।
4: शुणुले पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 संपर्क बेतार विवरणी उपस्थापन समीर मिश्र, वैषयिक सहायता जगह त्रिलोचन बेहरा और सनातन मुर्मू, प्रयोजना राजीव कुमार महंत।
5: श्रोतामାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଠସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଶୋଭା କୁର୍ତ୍ତୁ। ପରିବେଷଣ କଲେ ଠୁମରିରେ ରାଗ ମିଶ୍ର ଖମାଜ, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା କେ ସାଥ ମୈ ଲଭଲି ନିଗମ। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन

0: ऑपरेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक

0: चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रूपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं.
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज. ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर.
5: दोनों देश

0: Aichi Nuakai Nuakai Pete Borsor Juna Bhoktau Nua Pinma Dihe Borsor Juna Kopratau Tatape Vilasa Ache
1: Asa E Asa Sunuchu
2: Kaela
1: Sunta Yar ke tike aato
2: मुई नहीं पारे मोर याने कितने कितने बूता पड़ी चे पिटो बाट ले जाई अल्पी ना दे ले जाई कितने को था ये दे गामछा मगु जो बैले बाहरे है ओड़ा ने सुखू चे उलिया न
1: सुन परे बैली रे अच्छा घुटे हो डाकले भील टिके सुन बार के नहीं और इथी फिर इमाने पोती परमेश्वर बोली दिंगरा पिटबे
3: का बोलू थला हिमा का बोलू थलो गो
1: बैली यार कितने बेले गो के सुन ले तो जे कार पाखे फुर्सत अछे
3: खो एड की टिके कथा थी एडे राग हेसन ए दे तुम्हारी साठ खण को तो टिपी दउथली देखो तो केनता कुलकुला हे गला न जे खड़े न तो अछे आर खड़े घिनो बोले तो सुनो नहीं गो
1: हां हां घिनमिनो खाए बार पी बार के पैसा नहीं उठबार तते कपड़ा लता घिना दिसुची
3: नाय कहो जे तुमको कहि करि पर मोर किछि लाभ नै न कहे बाटा जा सारे का बोलुथलो जे जल्दी कह सेडे फेर मोर
1: मुई केबे का बोलुथली
3: हे भगवान मुई काई जैसी देखो तो इता कर कथा जे होय गो मते काणा माउली लागी छे जे सो सो जिनके मुई नर दियाई थी तिना तू हेला न देखु जे तुमे आर तुमर भितरे नाई न गो
1: ओहो हाँ हाँ हाँ हाँ ये मुनि कहीं गला का नहीं दिस बार जी
3: कहीं जाए ता भोटा के खेली खुला जाए तो बा यादे तो थीला देखो तो को आज मुनि नुआ खाई मी बोली किड़े उस वक्त बसोत्रे है उच्चे जे सोखालू सोखालू गाधी बुड़ी करी सामले गुड़ी

0: हाँ बिलदार, तुम्हें सत कहु तो तुम्हें सत कहु तो आज बालमुकुंद आएबे?
1: हाँ यहाँ चीनी तो आएबे।
0: माँ ए माँ आशा हाबिलदार आज्ञा का बैले जे सुनि पार्लु तो तोर तपस्या पूरा हेला बा, तोर व्रत पूरा हेला बा, सावित्री तपस्या आगाड़े चम लेखे देवता तो हार मानी जाइले आर बालमुकुंद तो पुनुष्टि आनलु माँ मा, बालमुकुंद आउछन बालमुकुंद तोर निके आउछन लो माँ तोर निके आउछन
2: आसुचा।

देख, मुई आई छी ए दिने ई फलस पी आर उठ ठिकाना भावुचु मुई सरेंडर करदेले कि तु फलस पी देले सारा दुनिया नु दुर्नीति उठीगला कि सारा दुनियाटा सुधरी गला मते पाइकरी तु शांति पाइलु। पुलिस शांति पाइला, सरकार शांति पाइला, हेले मुई मोर कथा केबे भाबिछ? अरे मोर लेखे इन हजार हजार बालमुकुंद अछन, आर हर दिन गुटे गुटे बालमुकुंद रकत सुसा होचे, ताकु ची नहीं दबार कि मरी नहीं दबार। ने फलस पीदे आर उठ। ओ मोर उपरे रिश्मी हेचु ना, ई काल तो आमको देखी नहीं पार्ला लो, देखी नहीं पार्ला। मुई कान हेले करीथिति कह? पेटे पेटे भूख, छाते छाते दुख, मुड़े मुड़े बोझ धरि करी गुटे एंता बाटे चली पारिथिति, चेन फाटे बाहर रखले आस नहीं, निराश और निराश। ना भल करी मुठे खाई परिचे, ना भल करी मुठे तुटे खुई परिचे, आर ना भल करी खोने पिंधी परिचे। बस मासूर लिखे निज को खाई रे, हेले तोर भूख मिठाबार लगी, तोते सुखे देखबार लगी ये पाठ थोली रे, और आज तोते सुखे देखबार लगी ये पाठ छाड़ली। हो आशा सेथिर लगी मुई मोर आशा निके आई छे, देख देख आशा मुई आई छे। आशा आशा आशा हबिलदार बाबू, मोर आशा के काना हला? बापा बापा आशा कंता उसु नहीं कर बा, इंस्पेक्टर बाबू मोर आशा के आशा आशा तू शहीद है गलु आशा, तू शहीद है गलु आशा, तू शहीद है गलु आशा।

0: पशु पक्षीको अंशुघातरु रक्षा गरिबा पई किछि उपाय
1: अंशुघात नहेबा पई दिन 11 टारु अपराह्न 3 टा पर्यंत टाण खरारे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहरकु न छाडी गुहाळरे किंबा छाई स्थानरे रखंतु
0: पशु पक्षीको स्वच्छ थंडा पानी पीबाकु दियंतु एवं प्राणीक विश्राम स्थान बा कोठरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु
1: गुहाळ कबाट ओ झरकारे ओदा अखा झुलाई मझिरे मझिरे पानी सिंचन करंतु
0: बुला पशु ओ पक्षीको अंशुघातरु रक्षा गरिबा पई घर आगरे जलकुंडर व्यवस्था करंतु
1: अंशुघात हेले पशु पक्षी माने किछि खांती नाही पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुंती पाटीरू और नाकपुडारू फेण बाहरे और समय समय जीभ

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता माने सुनुचंती ओडिया लघु संगीत कार्यक्रम परवर्ती गीतटी सुणंतु। कंठशिल्पी पंकज जाल, गीत रचना निजाम, संगीत विभूति भूषण।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: গীতটি কণ্ঠশিল্পী ইরা মহান্তি, গীত রচনা নিজাম এবং সঙ্গীত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ओडिया लघु संगीत कार्यक्रम शेषे शुणु ये गीतटी कंठशिल्पी ईरा महांती गीत रचना करछन्ती अरुण मंत्री एवं संगीत संयोजन विभूति भूषण।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ବବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ଅରବିନ୍ଦ, ପଙ୍କଜ ଚାଲ, ଇରା ମହାନ୍ତି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜି। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହା ଚିନିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ତର୍ପଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଇଟାଲୀ ଓ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକେ ଖାସ୍ ରାଜନୈତିକ ସହଭାଗିତାଥି ପରିଣତ କରବାର୍କେ ଦୁଇ ଦେଶ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେରିକା ଇରାନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଲ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇକରି ରହିବା ବୋଲି ଆକଳନ କଲା ଜାତିସଂଘ ଫେରଗା ହେବାର୍କେ ଥିବା ଏନ୍ଇଇଟି ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକେ ନିରାପଦ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଜୋର୍ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇବୋଲୋ ପ୍ରକୋପକେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରବାର ଆଉ ସମାଜକେ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଲ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିକରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର୍କେ ପଡ଼ବା 2024 କ୍ୟାଡ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକରି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାନୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଉ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରଥି ଜାପାନ ଅତ୍କା ସହଯୋଗ କରବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଲ ରାଇଜେ 85.85% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ପାସ୍ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ଖେପ୍ ଆଜିଠାନୁ ହେଲା ମୂଲ ଆଇବା 31 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନର ସକାଳ 11 ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଏ ଦେଶ ଆଉ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟିଆର୍ନୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଥି ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରଣାଳୀର ଦୁଇଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ ହେଲା ଶେଷ ପୃଥିବୀକେ ସୁସ୍ଥ ରଖବାର୍ଥି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଓ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବାର ବହୁଟେ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସ ଆଇବା ହପ୍ତେ ତକ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ବଢ଼ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 46 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ତତଲା ସହର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଇନୁ ଶେଷ ହେଲା ଜୁହାର
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ଆଜିର ପ୍ରସାରଣ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:30 ଶୁଣିବେ ଆଜିର ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ପିଙ୍କ 6:47 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ 7:10 ଶୁଣିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡାକ୍ତର ତନୁଜା ପାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:35 ଶୁଣିବେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୃତି ତପସ୍ୱିନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରଚନା ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:50 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାର୍ଗବ ପ୍ରସାଦ ମେହେର ଓ ନୀଳାଚଳ ପୁଟିଲ 8:30 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷମାନିଧି ବାଦୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ବିଶ୍ୱାଳ 8:45 ଶୁଣିବେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ପଣ୍ଡା ସୁପ୍ରଭା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ ଓ ମନସ୍ୱିନୀ ନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:05 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଢୋଲପାରେ ବଜା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପୀତାମ୍ବର ପୁଟେଲ ଓ ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା 11:30 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଶୁଣିବେ ବାତାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ ଶୁଣିବେ 12:30 ଶୁଣିବେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ ଅପରାହ୍ନ 8:05 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମିନତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅପରାହ୍ନ 8:20 ଶୁଣିବେ ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ନାରୀ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ରେଣୁକା ପଣ୍ଡା ଅପରାହ୍ନ 2:45 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପରାହ୍ନ 3:00